0: लेकिन रेजो काफी वेतन बढ़ाई की आएगी।
1: Go ahead,
0: 266-091-538, Katrina Bulger, white female.